वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है। पंजाबी रेडियो कैलगरी 102.7 FM ते यह प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच हर हफ्ते 5 दिन प्रसारित हुंदा है। प्रोग्राम का प्रसारण समा सोमवार तो लैके शुक्रवार तक कैलगरी समय अनुसार शाम के 6 बजे तो 8 बजे तक, भारतीय समय अनुसार ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच मंगलवार तो लैके शनिचरवार तक सवेर दे 5:30 to 7:30 बजे तक प्रसारित होंदा है। आओ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस इलाही संदेश के नाल।

0: हिस्सा दौड़ने तक रियो बैंकुएट हॉल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670-63 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

एक और फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हाँ। प्रोग्राम दे इस हिस्से विच लगभग साढ़े प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होंगे है। आप रोज़ ही विचार करते हैं। कल के प्रोग्राम दे विच आपां विचार कीता सी, जो पिछला प्रोग्राम इस तो सी पहला, कि मन ते गल चल रही सी, मन मैले सब किस मैला, तन तोते मन अच्छा ना। अपां ये विचार किसी नौजवान ने फोन ते सवाल किया सी, उस ते संबंध दे विच उसनों कल्ला ही नहीं सारयां दे नाल जिहड़ा जिहड़े नौजवानों के मन दे विच तोखले उठते ने, शंके पैदा होंदे ने, उन्हां दा निवारण करन वास्ते। ते इसे नाल ही तुरदिआं गल चली, क्योंकि मन की गल है, मन में पवित्र करना है। सिखी का लक्ष्य की है, डेस्टिनेशन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ गुरमत, व्हाट इज द गोल ऑफ सिख। जे असी गौर नाल पढ़िए समुचे गुरु ग्रंथ साहब जी की जरा सारण से वो जपजी साहब ते जपजी साहब 38 पौड़ियां 2 श्लोक ते आरंभ दे विच जरा कि सारी जरा जिसनों मूल मंत्र किया जाता रैत मर्यादा के मुताबिक, या कुछ विद्वान मंगलाचरण भी कहते हैं, उसनों मिला के ही असल विच जप शब्द तो ही जप बाणी जपजी साहब आरंभ होता है। ते उसकी पहला श्लोक जिहड़ा है, क्योंकि जदों एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक उस एके दी जिसनों आपां अकाल पुरख भी कहते हैं, ते गुणा नूं डिफाइन किया गया है, बयान किया गया संखेप दे विच एट्रीब्यूट्स। ते उस तो बाद आदेश हुंदा है, जप दो डंडियां पहला लगिया हुई ने, दो पाठ सरलेख। इत्थे जप शब्द जड़ा है ये आदेश है, पाओ समझो पढ़ो विचारो अंडरस्टैंड करो। पहला श्लोक आद श्लोक ही शुरू होता है, आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। वो सच वो होंद जड़ी है उस एके दी, एक ओंकार दी, वो टाइम एंड स्पेस तो ब्रह्मांड के आगमन तो पहला भी सी, पाओ जदों तो इतिहास आरंभ होया सृष्टि का उस तो पहला भी सी, होंद सी, जुगाद सच इतिहास के शुरू होने के नाल नाल ही समुचे इतिहास के विच वो होंद बरकरार है, क्योंकि एक ओंकार कार ही इस दी सर्वव्यापकता बयान करती है, इंडिकेट करती है, निरंतर जारी है पी सच, वर्तमान समय के विच भी वो होंद वाला है सच। नानक होसी पी सच, नानक जी कहते ने कि ये इस संसार दी होंद तो टाइम एंड स्पेस तो बाद भी, या अज के समय तो बाद भी, फ्यूचर दे विच भी वो होंद बरकरार है,
ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕਾਸਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ, ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਪਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜੋਰ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਚਨ ਪੰਚ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਬਣ। ਪਾਓ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਸਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹਨ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਉਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਪਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜੋਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ

0: मेडिकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी तारा कैसिडी जीनो 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी है इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: राग टोडी है धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया अज वाला पावन मुख वाक है।
1: हर बिसरत सदा खुआरी
0: सत्संग धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अमृत बाणी विच पहले अंक तो लैके आखरी अंक तक यही सानू समझाउन दी कृपा कीती गई है। भाई तू परमेश्वर कोलो आया है ते उस परमेश्वर नाल ही जोड़। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ने कहा एक ही है एक नाल जोड़। सत्संगत जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी च इस मानस जन्म नूं दुर्लभ कहा गया। मानस जन्म दुर्लभ है किसी शब्द विच हजूर इनू हीरा भी कहिंदे ने हीरे जैसा जन्म है। किते सच्चे पातशाह महाराज ने इनू कंचन की काया भी आखी है। पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने एक गल याद रखो कि भावें मानस जन्म है ते आ बड़ा दुर्लभ पर एक गल चेते रखनी चाहीदी है कि इहनू खत्म होण लग्गिआं इहनू नाश होण लग्गिआं इन्ना क समा लगदा जिन्ना क समा अख नूं चमकण ते लगदा। मानस जन्म दुलंब है शेन पंगर छल दे ही शारा बस अख दे चमकन जिने समय च सड़ के सवाह हो जांदी ए काया। भाई साहब कहिंदे ने पानी दा कर पूतरा। मैं इस करके बेनती कर रहा गुरु साहब दी कृपा नाल हजूर श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने जे रब नालों टुटोगे जे रब भुलेगा रब नालों टुटोगे ते पल्ले खुआरी पैणी आ खुआरी जिन्हों असी बेपति कहने आ। भाई जेड़ा भी रब नालों टुट गया उहदे पल्ले खुआरी खुआरी पैणी है लोक विच भी ते परलोक विच। पर भाई गुरदास जी कहिंदे जेड़ा बंदा परमेश्वर कोलों आउंदा है उहनूं भुल क्यों जांदा उहदे भुल्लण दा कारण की है। भाई साहब कहिंदे ने मानस जन्म दुलंब है शेन भंगर छल दे ही शारा पाणी दा कर पूतरा। पाणी तों साडा पुतला बनाया उस परमेश्वर ने उड्डै ना पाउण खुले नौ द्वारा। भाई साहब कहिंदे ने जदों बंदे दी जान निकलदी है नौ द्वारे ने नौ द्वारियां दे एक द्वारे चों बंदे दी जान निकलदी है जदों मरदा। भाई साहब कहिंदे ने परमेश्वर दी कुदरत देखो जदों बंदा मरदा नौ द्वारियां दे विचों किसे ना किसे द्वारे रही पौराण निकलदे ने। पर सारी जिंदगी जे किसी ने 50 साल जीवना 70 साल जीवना 80 साल 100 साल 150 साल जीवना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने भी सारी उम्र नौ द्वारे खुले रहिंदे पर उहदे हुक्म दे नाल सवास टिके होए ने। इन्हां सवासां दी हिम्मत नहीं कि नौ द्वारियां चों किसी द्वारे थाई अपनी मर्जी नाल बाहर निकल जाए। पानी दा कर पुतरा पानी दा पुतला बनाया उड्डै ना पाउण खुले नौ द्वारा। नौ द्वारे खुले ने पर प्राण टिके रहिंदे ने उहदे हुक्म दा। भाई साहब कहिंदे ने अगन कुंड विच रखिया जन्म लैण तों पहला इहनू अग विच रखिया अग विच। गुरु अमरदास महाराज भी कहिंदे जैसी अगन उदर मैं तैसी बार माया। जिथे बच्चे दी पैदाइश हुंदी है ना अग बलदी है उत्थे आ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੋ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੁਜਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੈ ਤਪ ਉਰਧ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੱਸਣ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਰਕ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸੀ ਮਹੀਨੀ ਜੰਮਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸੀ ਮਹੀਨੀ ਜੰਮਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਕਰੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਮਦੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਚ ਫਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਦੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਦਰ ਨਿਆ ਵੈ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਨਿਆ ਵੈ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ

0: जन्म लैन दी देर होई बाबा कबीर जी कहंदे ने जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसराए। हवा लगन दी देर होई फिर तू कौन ते मैं कौन रब ते फिर भुल ही गया। जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसराए खसम भुल गया। भाई साहब कहंदे ने जम दो माया मोया नजर नया वै रखन हारा। वो तो फिर कितने चेचे भी नहीं आया। जदो बच्चे का जन्म हुंदा ना सत्संग बच्चा फिर रोंदा है। दुनिया के लोगों की सोच होर है रब के प्यार की सोच होर है। हर बंदा रोंदा जदो दुनिया ते आउंदा। एक तुहाडा वड्डा गुरु ही है बाबा जिहड़ा हसदा आया ते हसदिया जीवन गुजारिया ते हसदा ही दुनिया तो किते नहीं गए। धन गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे ते साध संगत लागत पवन खसम बसराया फिर रब भुल गया। जदों बंदे दा जन्म हुंदा ए रोंदा है। डाक्टरां नूं पुछो भी जिहड़ा बच्चा जन्म वेले रोंदा इहदा कारण की है। डॉक्टर कहिंदा जी इहदे जन्म वेले रोण दा कारण है जन्म वेले दी तकलीफ। जिहड़ा बच्चा जन्म लैण लग्या नहीं रोंदा डॉक्टर उहनूं रवाउण दी कोशिश करदा उहनूं सूई चोबदे ने उहदे इस तरह हौली जी पटोकी जी भी मारदे ने हथ दी ते किसी ना किसी तरह रो पै। अज विज्ञानक युग दे विच भी जिहड़ा बच्चा जन्म वेले नहीं रोंदा समझा जांदा भी तंदुरुस्त। तो भाई गुरदास जी नूं पुछो भाई गुरदास जी जदों बच्चे का जन्म हुंदा है ये रोंदा क्यों। डाक्टर ते कहिंदे ने भी इहनूं जन्म वेले जिहड़ी तकलीफ होई है उस करके रोया। भाई गुरदास जी कहिंदे ने तकलीफ करके नहीं रोया इहदे रोण का कारण कोई होर है। सिखां आख्या भाई गुरदास जी होर कारण की है इहदे रोण का। भाई साहब कहंदे ने रोवै रतन गवाए कै। इहदे कोल सी हीरा रब नूं हीरा कहा गया। इसे करके बाबा कबीर जी कहंदे ने हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस। बाबा कबीर जी कहंदे दुनिया दे लोको रब हीरा जिस जेड़ा उस हीरे नूं भलाएगा। बाबा कबीर जी कहंदे ने ये जेड़ा परमेश्वर हीरा जेड़ा उस हीरे नूं छड़ के किसे होर दी पूजा करेगा ना। हर सो हीरा छड़ के करे आन की रास करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। बाबा कबीर जी कहंदे मैं ही नहीं कहंदा ये भगत रविदास भी यही गल कहिंदा जेड़े रब वर्गे हीरे नूं छड़ के किसे होर दी पूजा करनगे उन्हां नूं कोई माई दा लाल नरकां विच जानों नहीं बचा सकदा। भावें कोई कबरां दी पूजा करदा भावें कोई सप्पां दी पूजा करदा भावें कोई देहधारी दी पूजा करदा भावें कोई किसे होर अबे तबे दी सेवा करदा मैं ही नहीं गल कहिंदा। रविदास भगत जी भी कहिंदे ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास जेड़ा रब तो बिना किसे होर दी आस रखेगा वह नरकां च जाए। ते साध संगत भाई गुरदास जी नूं पुछो बच्चा क्यों रोंदा। भाई साहब कहिंदे इहदे कोल सी इक रतन इहदे कोल सी हीरा जदों इहदा जन्म होया ते जन्म हुंदिया सार इहदे हत्थ चो हीरा खुस गया इहदी डाड़ निकल गई ए रोन लग पिया। भाई साहब कहंदे ने रोवै रतन गवाए कै माया मोह हनेर गुबारा। ओह रोवै दुख अपना हस हस गावै सब परवार। भाई गुरदास जी कहंदे ओ बेचारा अपना दुख रो रहा ये नच दे टप दे स्पीकर लाउंदे शराबा पींदे टोल टमका बजाउंदे ओ बेचारा अपना दुख रोंदा ए हसदे टपदे ने ए लोग। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਨ ਬਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਵਾਨੇ ਦੀਨ ਬਸਾਰਿਓ ਰੇ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। मैनू खिमा करने असी गृहस्थी लोग हाँ, गृहस्थी बंदा परमेश्वर बच्चे बख्शद है, माता पिता भैन भाई। बाबा कबीर जी कहिंदे इन्हां दी पालना करनी, इन्हां वास्ते किरत करनी तेरा फर्ज सी। चंगा कीता तू टब्बर पालिया, बड़ा सोहना टब्बर पालिया, पर बद किस्मती तेरी ए आ वी तू टब्बर ते पालिया पर रब नू भुला के टब्बर पालिया, रब नू भुला के। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया भाई रहा ना बन। बस धंधा करता करते मर गया, टब्बर दे पालना सी, पर तेरी गलती सब तो वड्डी है वी तू रब नू भुला के टब्बर पालिया। नतीजा की निकलिया रब नू भुलाउन दा, ओ भाई साहब कोल फिर पंक्ति दोबारा सरवण करी। हां जी,
1: हर बिसरत सदा खुआरी।
0: पुत्रा जेड़ा रब नू भुला दे, जेड़ा रब तो विछड़ जाए ओदे पल्ले फिर खुआरी पैंदी है। खुआरी ओ फिर खुआर हुंदा है, रहिंदा है, दर बदर भटक गया फिरदा है। कबीर जी कहिंदे ने दीन बसार्यो रे दीवाने, दीन बसार्यो, तू तो रब ही भुला दिता। पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो, पेट भर लिया पशुआ वांग सौ गया, नतीजा के निकलिया मनुख जन्म है हारियो, मानस जन्म तू हार के चला गया। बस आ नतीजा निकलिया रब नू भुलाउन दा। बाबा कबीर जी कहिंदे ने साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो तंदे झूठ। जेड़ी सत संगत हर रोज करनी सी ना, जेड़ा तू वादा करके आया सा। भाई गुरदास जी कहिंदे ने बंदा बड़ा बेईमान ते बेजबाना बेजबान। सिखां आख्या जी ओह किवें, भाई साहब कहिंदे जदों दुनिया ते आउण लगा ना बंदा ते रब ने आख्या ओह भाई तू चलिया की करेगा जाके मेरे वास्ते। बंदा एडा चलाक कहिंदा जी मैं की करांगा, तुसी दसो मैनू दुनिया ते घल्लण लगे हो, तुसी मेरे वास्ते की करोगे। भाई गुरदास जी दे बचन ने रब ने आख्या तू दुनिया ते जा, तेनू रिजक भेजदा रहांगा, माड़ा चंगा कपड़ा लत्ता भेजदा रहांगा। ये बंदा एडा बेईमान कहिंदा जी लिख के दिओ, लिख के जबानी कलामी मुल्का दा हुंदा। इन्हें फिर लिख के लिया, लिख के इस मथे रब ते भी यकीन नहीं करता, इन्हें मथे ते लिखाया। तो भाई साहब कहिंदे फिर रब कहिंदा तू ते मेरे कोलो लिखा लिया, हुण दस वे तू जाके की करेगा। भाई साहब कहिंदे फिर इन्हें एक वादा किया, असन बसन संग लीने और बचन कीने, कपड़ा लत्ता रिजक लिखा के फिर इन्हें बचन किया, वादा किया। असन बसन संग लीने और बचन कीने, जन्म ले साध संग श्री गुरु राध है, तुसी मैनू जन्म दियो मैं सत संगत विच जाया करांगा ते गुरु जी दी आराधना करया करांगा। ये बचन करके आया, होया कि इहां आए दाता बिसराए, दासी लपटाए पंच दूत भूत परम परमत असाध है। भाई साहब कहिंदे इत्थे आ गया, इहां आए दाता बिसराए, दाता दे भोली गया। सात संगत गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च दाता शब्द बहुत वरिया है। आ कई साल हो गए बंबे वाले पासों ट्रेन आ रही सी, ते एक सिखी स्वरूप वाला परिवार, दो दे बच्चे, दो जी आप ते दिल्लियों बैठे, हुण अगले पासे जाना होएगा जम्मू वाल। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਤੀਏ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਦਾਤੀਏ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਾਤਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਦਾਤੀ ਦੂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਤੀ ਦੇ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਿਸਰਾਏ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭਰਮ ਭਰਮ ਸਾਜਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਮਰਨ ਬਿਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਮਰਨ ਬਿਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤ ਹਾਰ ਸੁਪਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਨ ਲੀਜੀਏ ਜਨਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੋ। ਅਵਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਬਤੀਤ ਲੀਜੀਏ ਜਨਮ ਜੀਤ, ਕੀਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਅਗਮਗਾਰ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਰਚਿਓ ਧੰਦਾ ਝੂਠ। ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਭਟਕਤ ਚਾਲੇ ਉੱਠ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕਾਂ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਜਾਪਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਲਾਬ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਨ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਜਾਪਿਆ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰਕ ਇਹ ਜਾਪਿਆ, ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪਿਆ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। ਪੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਲਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਾਂ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਬਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, तू तो बड़ा हरिया भरिया स कवल दे फुल सोने वर्गे एन झूमदे सी इधर उधर इधर उधर पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़ा सड़े ओए बाबा नानक जी पुछदे ने केड़ा दुख लग गया तेनू तू सड़ के गया है काली होई या देहुरी तेरी ते काया भी काली हो गई जेड़े मेरे वीरां दा बचपन पिंड च बीतिया उन्होंने चेता होएगा जदों छप्पड़ दा पानी सुक जांदा सी छप्पड़ दी मिट्टी भी काली हो जांदी सी हजूर कहंदे ने काली होई या देहुरे तेरी ते काया भी काली होगी की कारण है फिर अगले पासो जवाब आया नानक मैं तन पंग तालाब वाले पासे तो जवाब आया नानक शुक्र है तो मेरी बात पुछी आ मेरे च एक विघन पै गया मेरे को गलती हो गई मेरे के च घाटा पै गया मैनू केड़ी गल का घाटा पै गया छप्पड़ वाले पासे जवाब आया जाना पानी नाला जैसे ती मेरा संग अगले पासे जवाब आया नानक जी मैं इस करके सड़ गया मैं इस करके दुखी हाँ मैं इस करके उजड़ गया हूं मैनू पता लगा भी वह सारी रौनक पानी करके हूं मैनू पानी नहीं मिलता पानी सुक गया मेरे कमल के फुल सुक गए मेरी काया काली हो गई बाबा नानक जी कहते दुनिया के लोग यही हशर हुंदा है जेड़ा बंदा रब नू पलाता है जिन्नी नाम विसारिया से होत डिठे खे बाबा नानक हजूर कहते मैं सवाल च रलते वेखे बंदे मैं मिट्टी च मिलते वेखे वह बंदे जिन्हों रब भुल गया चलो खैर धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने हर बिसरत सदा खुआरी पुत्रा जदों रब भुल जे फिर पल्ले खुआरी पैंदी है हां
1: ताको धोखा कहां व्यापै
0: धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने भी असल विच गल ए आ बंदे दा भी कसूर कोई नहीं माया धोखा कर जांदी है बंदे ना एक शब्द आप नू याद है बाबा कबीर जी कहंदे ने हे मेरे रब जी ये जेड़ा बंदा तेनू भुल गया एदा विचारे दा अपना कसूर कोई नहीं इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारे आ माया ने तेरे नाल तोड़ दिया किंचित प्रीत न उपजे जन को जन कहां करे विचारे ये जिहड़ी माया वा ना खसमां नू खाणी ये बंदे दे अंदर तेरा प्यार ही नहीं पैदा होण दिंदी ये धोखा कर जांदी है माया बंदे नाल साध संगत बाबा कबीर जी कहंदे भी ये जिहड़ी माया वा ना माया इको दुनिया दे इस्त्री है हर इस्त्री दा पति दुनिया तो तुर जे ओह रोंदी है इको ही इस्त्री है जिहदा खसम मर जे ते रोंदी नहीं खसम मरे तो नार न रोवे उस रखवारा और होवे रखवारे का होए विनाश एक मालक मरदा दूसरा सराणे खलोता हुंदा है आग्या नरक इहां भोग बलास बाबा कबीर जी कहंदे जेड़े माया विच ही मस्त रहणगे ना जिन्ना ना माया धोखा कर जांदी है बड़े भोग भोगदे ने आग्या नरक पावक फिर वह जूना च तुर जांदा बंदा एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी बड़े ध्यान न सुनना बाबा कबीर जी कहंदे सारी दुनिया भावें को अमीर है भावें को गरीब है सारी दुनिया एक स्त्री नू अपनी पत्नी बनाना चाहते ने अपनी घरवाली बनाना चाहते ने एक सुहागन सगल प्यारी सगले जी जंत की नारी फिर बाबा कबीर जी कहंदे ने भी ये जिहड़ी माया वा ना माया कर शिंगार बह पखियारी वेशवा वांग हार शिंगार करके टैम सिर बह जांदी है संत की ठिठकी फिरै बिचारी पर जिहड़े संत लोग आ ना वो कहंदे ने परे हो गए बह परे हो गए बिचारी उन्हां तों डरदी बड़ी है संत भागो पाशा परे बड़े ध्यान नाल सुनियो बचन ये साडे सारयां लई है जेड़े लोग सिमरन करदे ने जेड़े लोग भजन नाम सिमरन सेवा करदे ने उन्हां दे पिछे भी लगी फिरदी है उन्हां नूं वस च करना चाहुंदी है संत भागो पाशा परे गुरप्रसादी मारों डर है, पर बाबा कबीर जी कहंदे प्रभु दे प्यारे तो डरदी बड़ी है, उन्हां दी मार तो डरदी है। ते बाबा कबीर जी कहंदे ने असल विच गल ए है, ये जिहड़ी दुनिया वण दुनिया साकत की ओ पिंड पराएं हमको दृष्ट परै त्रिख डायन, ये जिहड़ी माया लोग इनू बड़ा प्यार करते ने पर प्रभु दे प्यार नू पता डैन आ डैन, ये खा जांदी है बंदे नू, ये जप तप सिमरन सेवा खा जांदी है, ये डैन सब कुछ। कबीर जी कहंदे दुआई रब दी मैनू इहदा भेत पै गया, हम तिसका बो जाने प्यो, असीं इहदा भेत लै लिया भी ये करदी की है। जब हुए कृपा, जद फिर रब दयालु कृपालू हुंदा इहदा भेत लग जांदा है। कहो कबीर अब बाहर खरे संसार है कै अंचल, कबीर जी कहंदे ओ तुरी फिर दी जे। अब बड़े ध्यान नाल बचन सुनना, कबीर जी कहंदे धोखा कर दी अम्मा, यह राज भाग दे रूप च भी आ सकती है, यह वडियाइया दे रूप च भी आ सकती है, सोहने घर दे रूप च भी आ सकती है, चौधर दे रूप च भी आ सकती है। कबीर जी कहंदे मेरे को बड़ा भेस बदल बदल के आए, कबीर आई मुझे पैनिक करे कर पेस, हमारा खे गुरे अपने उनकी नो आदे। बाबा कबीर जी कहंदे मैं हैरान होया भी बार बार मेरे वाल आए, फिर मैं की कीता, कहंदे मैं इहदा नाको वढ़िया ते मैं कन्न कटे, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारी। कबीर जी कहंदे मैं पछाण गया भी ये माया, पहला मैं इहदा नक वढ़िया फिर मैं दे कान वड़े भी जा तुरी फिर। असल विच गल ये है साध संगत, प्रोफेसर साहब सिंह कहंदे ने माया दी गिरफ्त च फसिया होया बंदा दो गल्लां करके दुनिया ते जुंदा है, पहला तो लोड़ तो वाद करजे चुक चुक के इना खर्च करता है, इना खर्च करता भावे घर होए ते भावे व्याह होए, मेरा नक नहीं रहना, मेरा नक नहीं रहना, नक रखन वास्ते लखां रुपये खर्चदा, मेरा नक रह जाए। ते जदो फिर लखां रुपये खर्च दिंदा फिर कन्न ला ला के सुनदा भी हुण लोग मेरे बारे की कहंदे ने। बाबा कबीर जी कहंदे नक रखण वास्ते खर्चा कीता पिसो कन्न ला ला के सुनदा है, असि नक ते कन्न दोवें दे वढ दित्ते, नाको काटी कानो काटी काट कूट के डारे। कहो कबीर संतन की प्यारी, कहो कबीर संतन की बैर, तीन लोग की प्यारी। संत इहनू वैरी समझदे ने, दुनिया दे लोग इहनू अपना मित्र समझदे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने ताको धोखा कहां व्यापै भाई, जिदे ते मेरे रब की कृपा होए ओदे नाले धोखा नहीं कर दी, ओनू धोखा नहीं व्याप सकता। हां जी,
1: जा को ओट तुहारी,
0: धन गुरु अर्जन देव जी कृपा कर दे, हे मेरे प्रभु जिदे ते तेरी कृपा होए ए माया ओदे नाल धोखा नहीं कर सकती। साध संगत मैं बेनती करांगा साडे सारयां लई भी अरदास भी करनी चाहीदी है, पिए कदे धोखा ना कर दे, धोखे तो बचाए, बड़े रूप ने। भगत नामदेव जी आ टैलीफोन तो हूं आए ने, टैलीफोन मोबाइल फोन आ, मेरा ख्याल है भाई तुसी ला लो भाई 97, 98, 99 के करीब आए। पहला ये फोन नहीं सी होते, और जदों ये फोन आए बड़े हैरान होए लोग। जदों असी फोन मिलाने तो सब तो पहला अगला बंदा कहंदा कौन है भाई, तो फोन मिलाने वाला बंदा कहंदा जी मैं ही हाँ, अगला बंदा कहंदा मैं पछाणिया नहीं, अपना नाम दस भी तेरा नाम की है, वो फिर नाम दसदा। भगतां दा टैलीफोन चलता रब दे नाल, सीधा चलता फोन इहनां। साडे उस्ताद जी कहंदे बेटा भगत नामदेव जी ने रब नू फोन मिलाया, ते फोन मिलाने लई नंबर सही चाहिए ने, सही, एक भी नंबर गलत हो जाए फोन नहीं मिलता। ਰੱਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾਮਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਨ ਕਿਤੇ ਕਈ ਥਖਲਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਬੋਲਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਕਸ਼ੂਨ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਹੱਥ ਬੇਕਾਨੂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ
1: ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵੇ 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ

0: प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124, 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है, या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो, तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811, 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन, 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11, 2316 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347, 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट, कैलगरी, नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानूं जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर का पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकते हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मलिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल

हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक, तन ओ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालिया दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: जाल पा पदारथ इतड़े

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.

दल पंजन गोर सूरमा दल पंजन गोर सूरमा वड जोड़ा बहु पारी उपकारी वड जोड़ा बहु पारी

जोग जोग सत गुर तरे अवतारी, हरे अवतारी हरे अवतारी। पांच प्याले पांच पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी।

जिन सब किछ दीना राम, जिन सब किछ दीना राम। नाम जपत नानक जीवे, नाम जपत नानक जीवे, शीतल मन सीना राम।

खेल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, संत जना मेल हर जस गायो, संत जना मेल, संत जना मेल, संत जना मेल हर जस गायो।

0: नानक रसगुद्धा रसगुद्धा।
1: श्लोक महला पहला। घड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सरब जंजाल, नानक मुसै ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला।
0: वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड उडरावा चट है पाए लोक विखे लोक हसै कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कां गावन सीता राजे राम, निरभउ निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवह करम चढ़ाओ भिन्नी रैंज ना मन चाओ, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत, लाटू मधाणिया नगा पंखी पौंदियां लैन नसा, सुवै चाड़ पुहाइए जंत नानक पहुंदिया गणत ना अंत,
1: बंधन बंद पवाए सोए पैकित नचे सब कोए, नच नच हसै चले से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होए, नचन कुदन मन का चाओ, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ
0: तिना मन पाओ, कोड़ी ना उतरा नंकार है, राय ले नरक न जाइए जियो पिंड सब सदा, देखा जै आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना, कर पुन महो नीच सदाइए जे दरवाना पर हरे, चार वेस करे दी आइए, को रहे ना परिये पाईए परिये पाईए,
1: थोड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए, जियो पिन सब तिजदा देखा जाया गवाइए, जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए, जे जलवाना पर हरे जरवेज करे दी आइए, हो रहना परिये पाईए हो रहना परिये पाईए।

0: ले लाट लिखा से
1: श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जिते बरस बरस पढ़िए जिते मास पढ़िए जिते यार जा पढ़िए जिते सास नानक लिखै एक गल होर होमें चखना चाक महला पहला
0: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एह निस कहरे मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपेताना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई मूर्खन दे पत गवाई विण नावे किश थाए ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसानी अंद ना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नहे केवल हौम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाव दर सोहन कीरत गाम दे नानक करमा बाहे दर टोना लहनी काम दे कमूना बुझन अपना अड़हो आप गणाए दे हौंडी का नीच जात होर जात सदाई दे तेन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
2: पौड़ी भगत रह मन पाऊं दे दरसो हन की तगाम दे नानक कर्मा पारे दा ढोने लही ताम दे इक मूला पूजन अपना अनहोदा बनाए दे हौ ढाडी का नी जात होर उत्तम जा सताई दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
0: सच शाह हो हमारा तू धन।

0: पौड़ दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्तक लाई है। कूड़ा लालच छट्टी है होए एक मन अलख ते आई है। पालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वे पूर्व लिखे आ ता तोड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव दवाई है सेव दवाई है सेव दवाई है।
1: ओड़ी दान महंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है। कूड़ा लाल छटिया हो एक मन अलग ते आई है। फालते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है। जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़ती ना दी पाई है। मात थोड़ी सेव गवाई है मात थोड़ी सेव गवाई है।

0: हर दास पन हारो।
1: श्लोक महला पहला। सच काल कूड वर्त्या कल कलक बेताल, बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल। जे इक होए ता गुवे रुति हुरत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे अंगना सोए। पै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पहुतन होए, नानक भगती जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला।
2: लब पाप दोए राजा महता कूड़ हुआ, सिकदार काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार। अंधी रईयत ज्ञान विहूनी पाहे भरे मुर्दा, ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार। उच्चे कूके वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजे करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुक्त ना जाने छड बह है घर बार। सबको पूरा पे होवे घट ना कोई अख है, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: वदी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए,

0: जिनकी लिखे पत पवे
1: चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया
2: तातनी खसम ते आया न दंता के बस किश नाही दुद वे की जग तू पाया एक ना नो तू मेल ले एक आपो तुद को आया गुर कृपा ते जाने
1: जिथे तू द आप बुझाया सहजे की सच समाया सच समाया सच समाया
3: औड़ी तुर करम जना को तुद पाया ता तिनी कसम ते आया एना जनता के बस किस नहीं तुद वे की जग तू पाया एक ना नो तुम मेले का पोह तुद खोया गुर कृपा ते जाने जिथे तू दा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।

0: मोहे चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
1: पौड़ी पड़े हुए गुनेगार तो मी साधना मारिए जेहा काले कलना ते वेहो नौ पचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दरगह गया हारी है पड़े आते हो मैं विचार अगे विचारी है मोहे चले सो गे मारिए मोहे चले सो गे मारिए।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हूब रहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो हम आव

0: te darea se oprită
1: lăbării.
0: Ec iutam pantă suniu gure sangat, te hemilant jam tras mitai. Ek ardas paat kirat ki gore Ram das rakhu sarnai. Ek ardas paat kirat ki gore Ram das rakhu sarnai.
1: So kaho tal gur seviya अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामदी नूर अरसा कुरसा चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहा दसाह जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावेसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाह सत नाम श्री साहिब जी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद

गोरे हाथ धरे मेरा माथा, जन्म जन्म के केल बिख दुख उतारे, गोर नाम दियो रे न लाथा, मेरा हियरा रतन नाम हर बसिया।

जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गोर नाम दियो रेन लाथा, मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था, गोर पूरा हर नाम दृढ़ाया, बिन नावा जीवन बिरथा रहा।

planète papa. तिन साधु चरण ना सेवे कबहु, तिन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफले ओ जन्म सनाथा। मोका की जदास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा।

0: अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
1: हर पाए।
2: श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाय निरसक निरसे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत।

0: पवित्र सत गुर रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
1: सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहे भरपूरे
0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
2: बोल जी वाहे गुरु एक ओवंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौते जी सहाय वार श्री भगौते जी के पातशाह दसवें प्रथम भगौते समरका गुर नानक लय त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जस डठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया घर नौ निदयावताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सह साहिब जादिया चालिया मुकटिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सगया। देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तखता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आर्याय। तो देग तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंड बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दियोटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बखसना सुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: तिन हर पूज करावा पूज करावा।
1: श्लोक महला पहला। जे कर सूतक मनिए सत्य सूतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया।

0: हेम माने आंदे मान ने ताने आंदे तान ने ओटे आंदी ओट तन तन। श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसारी वार दे भोग जी की अरदास भुल चुप माफ करनी सिखां पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चेहन अर वरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अन भाओ प्रकाश। अमितोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गण जाय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वान त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथा कवना कर्म नाम वर्णत सुमत। जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिम्र मिट है खेना जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जिह सतगुर सिमरंत जीओ की तपत मिटावै जिह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाव निध पावै। सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करहो। जिह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो। चरण सरण गुर एक पेंडा जाए चल सत गुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। एक बार सत गुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। पावनी भगत पाए कौड़ी अग्र भाग राखै, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। सत गुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सत गुर आयो शरण तुहारी, मिला सुख नाम हर सुबा, चिंता लाहे हमारी अवर ना सूजा दूजी ठाहर। हार परयो तौ दुआरी, लेखा छोड़ अलेखा छूट, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बखसिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछ परयो, राख लेहो एह बारी। तुमरी शरण तुमारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखहु राखन हार दयाला, नानक करके गोले। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परस ऐ गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दे, नूरे अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसा, जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दावेसा, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दैसा, जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दावेसा, सत नाम

0: हम अंदुल का गोरा अंचल दीजा, जन नानक चल है मिलन था। हम अंदुल ज्ञानहीन अज्ञाने, क्यों चल है मार्ग पंथा। हम अंदुल का गोरा अंचल दीजा, जन नानक चल है मिलन था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी महला चौथा, कर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरयो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो रेन लाथा।
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

0: ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਮੋਟਰਬਾਈਕ, ਬੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ 403-554-4444
0: ਯਾਨੀ 403-554-4444 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 210 23 32nd ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला

0: सिख डुब गए, कोई नहीं रहा। मैं इस गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं। मेरा मुर्शिद सदीव कालीक है ते कमाई वाला भी सदीव कालीक है। हो सकदा किरत करदा नहीं हुंदा स्टेज ते, अपना ट्रक चलांदा भी बंदगी करदा, वह दफ्तर च बैठा बंदगी करदा। ते महाराज की करदे सन, कई बार सिखां ने सवाल करने ना कि महाराज आ जिहड़ी बाणी दी तोक कहिंदी कोई है भी है कि नहीं, ते महाराज नाल ही एड्रैस दे दिंदे फलानी दा तुर जा। जदों आ शब्द आया भी खरक सोग तो न्यारा, ते महाराज ने कहा गुरमुख मैं तेनूं समझाते दिया पर तेनूं दसना सिखी किड्डी फैली है, जा भाई भिखारी दे घर चला जा तेनूं उत्तर मिल जाएगा। भेजा महाराज ने ना एक सिख आया, किताब है बड़ी पुरानी नवनीत, मेरा ख्याल प्रिंसीपल भगत सिंह हीरा दी लिखी, नाम बारे बहुत सोहनी किताब है, पर फिर भी वह किताब तां सोहनी है जे प्रैक्टिस करांगे तां। उंझ तां गुरु ग्रंथ साहिब बड़े सोहने, जो गुरु कहे सोई पल मन। उहदे च उहने एक घटना दित्ती रोम रोम ध्यान बारे, कहिंदे ने भी महाराज नूं सिख पुछदा भी आ जिहड़ा एक दू जीबो लख होवे लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा आ की है एक नाम जगदीश ए किवें। सतगुरु कहिंदे आ एक रसना शुरू करदी है अखीर ते रसना रसना एक एक रसना नाम जी बन जाती, गुरमुख रोम रोम अर त्यावे। ते कहिंदा महाराज तू कहीं लिखे कोई है, सतगुरु ने गुजरात भेजिया मांगठ पाकिस्तान जिहड़ा रह गया भाई बनो। वह गया जी भाई बनो घ्यो का काम सी, वह घ्यो का काम पै करदे आ ते अपने गाहकां नाल उलझे आ। उहदे मन च है महाराज कित्थे भेज दिता, यह बंदा तां कंजूस लगदा पिया, ना ते घ्यो घट वध नहीं करदा ना पैसे। ते इन्हें जाके मिलिया कहिंदा महाराज मैं तां घ्यो क्यों नहीं लैणा, मैं तां दर्शन करने आ तुहाडे। घर लै गया जल पानी छकाया। इहदे मन च फुरना सी भी महाराज ने जिथे घल्लिया इह बंदा कीहो जिहा। उन्हें समझ लिया कहिंदा भी एक काम करी सिखा मेरे नाल हथ वटाई, साढ़े अंदर तीन मट भरे पए नी घड़े, मट घड़े नूं कहिंदे सन जी, तिना ते कपड़ा बने। मैं किताब का जिक्र तां इस करके कीता भी मैं पढ़ना तां नहीं, इस करके भी किसी के मन च वे कित्थों गल आई। वह कहिंदे उहदे च एक घड़े च पानी है, एक घड़े च सरों का तेल है, ते एक घड़े च घ्यो वे, ते बिना मूँह खोलन तो पहचान के लिआउणा। पता लग गया मेरे बारे शंका बना बैठा भी मैं काम काम करना, क्योंकि असी तो मैं उस दिन क्या बाबा जी जिन्नियां तस्वीरां बनाईयां ना, जां ते महाराज अगे फरूट पए आ जां महाराज पिछे वड्डे आसन लगा है। प्यारिओ गुरु रामदास तां 21 साल गोइंदवाल सेवा कीती, उह तां किते नहीं मिलदा। थड़े बनाए बाबा जी ने 18 साल हल वाया, उहदा शंके च आ गया। उहने कहा घ्यो वाला लिआई पर उत्तों कपड़ा नहीं खोलना। उहने वेख्या तिन्नां नूं हत्थ मारिया, जिथे पानी से बाहर सिमे थिंदे दा पता लगा, और घड़े वाला चुक लिया जिहड़ा घ्यो वाला। जदों लिआया ते भाई बन्नू कहिंदा उत्तों मूँह बंद सी, तेनू किवें पता लग गया घ्यो वे। उह कहिंदा मूँह बंद सी पर मूँह बंद तो ही पता लग जांदा है, क्योंकि घ्यो इहदे अंदर रच गया है, इहदे कंडे ते बाहर आया थिंदा दसदा पिया इहदे च घ्यो है। भाई बन्नू कहिंदा तू किहड़े शंके बनाई बैठा सी साडे लई, जे अंदर घ्यो होवे तां घड़े च जरूर रचेगा। जिस काम लई तेनू गुरु अर्जुन देव ने भेजिया, कमाई मेरी नहीं, अंदर गुरु की कृपा ना नाम वरतेगा ते रोम रूम च जरूर रचेगा। इन्नी गल सुनी ते चरणा च डिग पिया, कहिंदा उन्हें चुक के जो सीने ना लाया, सची मुची भाई बन्नू दे रोम रूम विचों गुरु की आवाज पे आउंदी सी। इन्नियां कु बेनतियां स्वीकार करियो, बेअंत भुला मेरे तो हुई ने, मेरे तो कोई लफज तलफज बोल दिया, जे किसी ना चंगा लगा बख्श दिया जे, पर सच्चाई मेरे तुहाडे वास्ते ही है। गुरुद्वारा जुड़न की थां हुंदा है, गुरुद्वारा टिकन की थां हुंदा है, गुरुद्वारा गुरु दे राही रब दे दर तक जान दा एक रस्ता हुंदा है।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue, North East, कैलगरी

0: बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मंगलाचरण है। मंगलाचरण भी कई रूपा च आउंदा है। एक सब तो ज्यादा मंगलाचरण इस रूप च आया, एक अदुती वाहे गुरु जिदे वर्गा होर कोई भी नहीं। ते तुहाडी जानकारी लई असीं सारे अपने आप नूं एक सोझ कराइए कि सारी गुरबाणी विच, सारे ग्रंथां विच, वेद पुराण कुरान जितने ग्रंथ हैं, गल तां एक दी कीती हुई है। एक ओंकार तो बाणी आरंभ होंदी है, 18, 10, 20 तक सारी बाणी एक दी गल कीती है। एक ऐसा है सजाति विजाति सबगत भेद तो न्यारा है, सजाति, दूजा है विजाति, तीजा सबगत, तीन भेद होंदे। सजाति इको जाति दे, असी मनुख इको जाति दे हां, ते साडे शरीर च किन्ना फर्क है, हर एक दी शक्ल वक्री वक्री है, पर वाहिगुरु भाई उहदी कोई जाति है ही नहीं, उहदे वर्गा उह आप ही है। तां ही उहदे बारे कहिंदे साहे मेरा एको है, एको है भाई, एको है। आओ पंक्ति सारे मिलके पढ़िए, साहे

इक्को ही है मालक, इक्को ही है वाहेगुरु, कोई दूजा नहीं है, इक्को है। फिर मुड़ के मोर लाउंदे, इक्को है भाई, इक्को है। उहदे सजाती भेद नहीं है, दूजा है विजाति, वक्री वक्री जाति, घोड़ा गदा वखरा है। रब विच यह डिफरेंस है ही नहीं, वो इक्को ही है। ते अगा है सवगत, सब अपने गत शरीर विच, शरीर विच हाथ वखरे, पैर वखरे, नक वखरा, अख वखरी। रब का शरीर है ही कोई नहीं। निर्गुण विच गल निर्गुण की कर दे, एक निर्गुण है जिस कोई भेद नहीं है। ते अगे आ गया ओंकार, ओंकार कहिंदे जिहड़ा निर्गुण तो सरगुण स्वरूप विच आया है। ते आ के उत्ते कार लकीर पाई हुई है, ये लकीर पता क्यों पाई? इहदा मतलब है भी एक रस वो सभनी थावां ते सभना विच है, साडे विच भी उतना है, कीड़ी विच भी उतना है, ते हाथी विच भी उतना है। यह नहीं भी हाथी ज्यादा मोटा होवे वाहिगुरु ते कीड़ी भी छोटा होवे, नहीं, बराबर स्वरूप है उहदा। जरे जरे विच उहदा स्वरूप बराबर है, तां कहिंदे कार एक रस व्यापक सब नूं प्रकाश देण वाला वह है सरगुण ते निर्गुण स्वरूप एक ओंकार। उहदी प्राप्ति किवें होवेगी? सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की कृपा राही। वो सच्चा गुरु कैसा है? सत गुर प्रसाद, जो सत कहिंदे सदैवी है, गुर चेतन है, ते प्रसाद अनंत स्वरूप है। यही स्वरूप है एक मनुख का, हर एक का यही स्वरूप है। ते यह स्वरूप दर्शाने लिए सतगुर ने सानू बाणी बख्शिश की है, भगती बख्शिश की है कि मना सतगुर की बख्शिश नाल अपने स्वरूप की

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नु 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड।

0: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-5180-227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: रिपुरण जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रिशावंत जिमे पाई पियुषा त्रिशावंत जिमे पाई पियुषा

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक, तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इनादा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East Calgary। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरदगी बैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूरन दीजै हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन का